पाठ पाठ की जान जब उदकर करा करतारा प्रजा तहरत तब देह पारा जब या करख करत हो कम हूं तम मैं मिलत देह तार सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही तेरे हत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद अस

रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जिया सबके जान ला सब कि तेरे वस तेरा घर बला तेरे कर आनंद वधाई।

सिमरो अंगद दोख न कंदन गुर अमर दास हृदय नित त्याव हृदय नित त्याव श्री गुरु रामदास गुण गावो गुरियार जन विघ्नन के नासक

0: महाराज जी फिर सोचाचार करते ने, इशनान करते हन पिछले पैर दा जी।
1: बैठत है पुन सभा मजार।
0: फिर संगत जी सभा दे विच आके, संगत विच आके महाराज जी फिर बैठ जांदे ने इशनान करन तो बिना। संगत जी दो समय महाराज जी इशनान दी क्रिया करते हन। ते इस प्रकार जिन्हां ने गुरु दरबार दे विच आउणा हुंदा ना, उन्हां नूं भी दो समय ही इशनान करना चाहीदा है। अमृत वेले तां असीं करदे हां भाई, जिन्हां ने गुरु दरबार दीआं सेवावां निभाउणीआं ने, ग्रंथी कीर्तनीए ढाडी सिंह रागी सिंह गुरु घर दे वजीर, उह सारे दिन दी असीं कोई क्रिया कीती हुंदी है, कोई क्रिया करन तों बाद फिर बंदा इशनान करके जिहड़ा गुरु

0: महाराज जी दे कोले कोई भी नहीं रहिंदा फिर जी, महाराज जी कल्ले हो जांदे ने गुरु रामदास साहिब जी सच्चे पातशाह।
1: लोचन मह जल झलकत सदा,
0: सदा महाराज जी दे नेत्र जेड़े ने ओ जल दे नाल शीतल जल दे नाल खालसा जी छलकदे रहिंदे हन। ओदा कारण यह है कि गुरु अमरदास महाराज जी दे जान दा वराग महाराज जी नूं बहुत ज्यादा है। इस करके महाराज जी दे जेडे नेत्र हन ना गुरु रामदास साहिब जी दे ओ सेजल ही रहिंदे ने, अखां जिहड़ियां ने उन्हां विचों जल झलकदा ही रहिंदा है।
1: प्रेम प्रवाहे न मिट है कदा,
0: कहिंदे प्रेम दा प्रवाह महाराज जी दे अंदर चल रिहा है गुरु अमरदास साहिब जी दा, कदे भी मिट नहीं सकदा जी।
1: जाम निसा लग सिख समदाए,
0: खालसा जी रात जदों पैर हो जांदी है, रात पै जांदी है, जिन्ने भी सारे सिख हुंदे हन, जाम निसा लग सिख समदाए, जदों कहिंदे जाम कहिंदे ने खालसा जी पैर नूं, निसा कहिंदे रात नूं, रात

0: ताओ दर्घ सुख पावहु संतहु ऐसी कथहु कहानी। स्वर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलह गुरमुख बाणी। रहाउ परपंच छोड़ सहज घर बैसहु झूठा कहो न कोई।
1: पिछली पंक्ति दे विच दो स्वरूप आए हन पवित्र पाठ दे, सोर पवित्र नर देव पवित्रा। पहला तत्ते दे जड़ा करने तो रहत है, दूसरा तत्ते दे करने दे नाल चरणा दे विचरारे आए हन उचारण।

जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का धन सब हर का हर के गुण हाउ क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बै अम्ब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध न जाने।

हम खेलह सब लाड लडावह। तुम सदगुणी गहीरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण। हम भी संग अगाए मिलत मिलत मिलत।

0: क्या देवाओ जा सब किछ तेरा सद बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर किरपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पढ़दा टूटा
1: पढ़दा पाठ पोला ही कहना पढ़दा नहीं कहना जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया कहो नानक सब पढ़दा टूटा।

मीत सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रै गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूर्ण हर नाय नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला पंजवा।

0: टूट पटल सोधे शास्त्र सिमरत सगल
1: पटल पाठ पोला करना पटाल नहीं करना जा पटल भी नहीं करना ते किसे भी अखर नू अगेतर पिछेतर नहीं लाउणा सीधा पटल सारे अखर कठे करने उत्ते कोई भी मात्रा नहीं लाउणी पटल सीधा उच्चारण करना जिवें ज्ञानी जी ने कीता है बेन हर नाम न टूटस पटल सोधे शास्त्र सिमरत सगल
0: सो ना

सम्मान योग गुरु रूप साध संग जीओ फतेह प्रवान करनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर्म दे अनंत पहलू ने अनंत रूप ने और हर पहलू दी अपनी अपनी विचार है। धर्म दी दुनिया विच कर्म दी बहुत वड्डी चर्चा है। अज आपां इसनूं ही गुरबाणी दी रोशनी विच पढ़न दी समझण दी सोचण दी विचारण दी कोशिश करदे हां। करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। वो प्रभु सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है, उस तो कोई बेइंसाफी नहीं आती। कोई दबाव पा के उसका फैसला नहीं बदलाया जा सकता, कुछ लालच दे के उसकी कलम तोड़ी नहीं जा सकती, कोई होर किसी प्रकार का लोभ लालच रख के उसके फैसले नूं उसके इरादे नूं ना मोड़िया जा सकता ना तोड़िया जा सकता। इस वास्ते कहिंदे ने वो अटल है, उसका न्याय अटल है, वो आप सच है, उसका न्याय सच है। ये गल वखरी है कि दुनिया विच जिथे इंसाफ मिले सारे अरब विच ईरान अफगानिस्तान ते भारत विच उसनू अदालत कहिंदे ने। अदालत अदल कहिंदे ने इंसाफ नू, अदालत इंसाफ दा घर अखरी अर्थ ये बनते ने। अदल इंसाफ, अदालत इंसाफ दा घर। मुनसफ जिड़ा इंसाफ करे, मुनसफ जो इंसाफ करे, अदालत जिथे अदल होवे जिथे इंसाफ होवे। बाकी दुनिया बारे ते शायद मेरी इतनी जानकारी ना होवे, पर भारत बारे मेरी जानकारी है। उत्थे ते अगर पैसे हैं ते इंसाफ खरीद लो, अगर ताकत है ते इंसाफ खो लो। जे ताकत नहीं है इंसाफ खोण दी ते जे पैसा नहीं है इंसाफ खरीदण दी, तो इंसाफ मुफ्त दे चथे किसे नूं नहीं।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसदे व्रता कोई ना है
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: आपन की या कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: गत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह है
0: सब की जोत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को गर्भ है
0: जा सब कुछ तिसका दिया दर्प है
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: देखो होए वह दातार
0: इस देन हार जाने का वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थमे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़त रहे
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: गुर दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिन लाई है
0: गुर लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग दूत सह चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: लपट रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माहे
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: साजिब मान लेहो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कहे सब कोई
0: मुखो जलहर दरगह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतगुर हार है
1: चरण साध के धोई धोई पियो
0: हर प्रसाद को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध उपर जाइया कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अनक बिगन ते साधु राख है
0: हर गुण गाय अमृत रस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मित्र को जी वालन हार
0: भूखे कौ दे बते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरु लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिसका करना है जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी
0: सबती उज निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन को की प्रतीत
0: जन आवे हर प्रभु चीत
1: भक्त भक्त सुनिया तेह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सकता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सोजन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभु भिन्न
0: सब जाए नानका जिस हो सो प्रसन्न अष्टपदी
1: अवनासी प्रभ मन मह राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: इससे परे नाही किश होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाऊं
0: नानक कै मन ए नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जा का नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: हंद रूप मंगल सद जा कै
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: तप मत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: त्याय त्याय भक्ता सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे
0: सगल देव हार अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाई
0: जन्म रेफरे आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विसार
0: रब बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे थिन माही
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना भेद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाव
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
0: सत के वर प्रधान
1: करतूत सत सत जा की वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समानी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रकाश खुदाई
0: विश्वास सत नाम गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जल जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की असब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सृष्टि सो करना है हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योत सुभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
1: करके रंग राज जन रहे
0: करके वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जाके संगत रह संसार
1: जन का सेवक सो वट भागी
0: जन के संग एक लिव लागी
1: गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सतधारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजनहार को सत सब होई
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जनमानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया
0: तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजे तिस माहे समाना
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा
0: सेवक की रख निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रख
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम पाई
1: अपने सेवक की आप रख
0: ताकि कदमित कोई न लख
1: आपके सेवक को न पहुंचे
0: आपके सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य वृथे जात
1: मारे न रख अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: आहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जब नानक प्रभु लख बडानी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: मरते मन तन तरपी है
1: नाम रत्न जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न हिंद दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: मूर्त बैठ शोभत नाम
0: कहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रबे अपने जन कीनी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाई
0: रबे अपने सिर रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रबे अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मर मेरे तिन की ओट लेहे
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जिन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान सगली छाड़
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आपन जान न होवी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण गावे अष्टपदी
1: सतगुर सेव की करे प्रतपाल
0: सेव को गुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरे
0: गुर बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: गुर का सिख बकार ते हटे
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवारे
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे
1: गुर के गृह सेवक जो रहे
0: गुर की आज्ञा मन में सहे
1: आप उसको कर कष न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्वे गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ
0: नानक बार गुर कौ बल जा
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश परम
1: सह सियान पुलिया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: दर्शत चरण गत निर्मल रीत
1: भेट संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर भजन करन आगाने
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अक्यो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्ट पे कह हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भाव तिस लय मिलाए
1: वाहे को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: कहूं बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतपुर अपने
0: नानक जिस पर सादा सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणता
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेश वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम बहुत दुख ते नासे
1: सत माही ठांड बरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेसे
1: भव चुका निरपो होए बसे
0: सगल व्याद मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: हित पाई चुके भ्रम गमन
0: सो नानक हर हर दस सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभु आप नाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साधक संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चल बिन भजन
0: बिखिया
1: सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी।
1: संत जना मेन करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवर पाप सब मीत पसारो,
0: शर्म कमल विद मैं उरतारो,
1: कर्म कान सो पाप समर्थ,
0: निरकर गहो नाम हर बथ,
1: केहो तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार कुंट उठतावे,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाये,
0: रोग मिटे हर अवखद लाये,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते आवैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाउ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: अवबिन से पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाये बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फांसी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यूं रत्न जन्म का होए उदार,
0: हर हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मर वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस स्थिर रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले आने,
0: भगत बिना बहु डूबे सियाने,
1: भगत की भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार पूर सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसै सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सबदर गय जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: तो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाह,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक स्के गुण गाओ अनंत,
0: मंत्र जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे उप्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्राष्ट गए,
1: मंतन अंतर एक प्रवराता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: भजन करो प्रभ की नित नीत,
1: एक ओट एक आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोए,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: जिच पुन्नी श्रद्धा सा पूरी,
0: अब रहे सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भगती नाम समाये,
1: सोक्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सोक्यों बिसरे जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया,
0: सोक्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह रख है,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जन्म जन्म का टूटा गंड है,
1: गुर पूरा तत ए है बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो ए काम,
0: आम त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरी है संसार,
0: भगती तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निद नाम,
0: मूढ़त जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का हो वतनास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाओ,
1: नेत्रों पेख दर सुख होए,
0: मन पिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: बिरला को पावे संग,
1: एक बस दी जय कर माया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: रब बख्शांत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोबिंद गोपाल,
0: सर्व घटा करत प्रतपाल,
1: हाथ पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी सो पा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: बार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के वचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदहार
0: आप त्रै लोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बजे
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजे
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आई
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर भई सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भई गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आज जाल विकास के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक रवि खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: दौर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल थे उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ते फल तिस जन के मुख पनि
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत के मन बसराम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हा प्रभु चीत
1: जन्म मरण ता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत ता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सब ते ऊच ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सब

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

पौड़ी वडी वडाया पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग नेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किस जान ला, सब किस तेरे वास तेरा कर पला।

0: KRPI Radio ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਰੀ
1: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ
2: ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਇੱਕ ਸੂਕਸ਼ਮ ਉਹ ਜੋ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਰੋਗ ਅਕਸਰ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਗ ਅਕਸਰ ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੋਗ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਸੋਗ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸੋਗ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਗ ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਮਨ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋ ਸੋਗ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਗਈ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵਕਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਨ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੋ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੋਈ ਖੇਲ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕੋਈ ਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਸਦੇ ਚ ਬੈਠੋ ਖੇਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏ ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੋਗ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਗ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸੋਗ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਜਲਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਹੋਵਨ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਹੋਵਨ ਤੋ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਰਕੀ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनों पुराना कर देंदा है। क्यों? मन चंचल है। चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे है, चल रहे है, चल रहे है। तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है। मन चंचल लंगे अग्गे, तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है। और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदत भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने। हसदी होई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहा ही बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है, और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई दे च बैठना चाहता है। सोग इस नूं महफिलां दे च नहीं बैठन देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है। और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नूं जन्म देंदा है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नूं जन्म देंदा है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है? इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने। क्यों पहुंचांदियां ने? पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इसके अंदर चल रही ने। किसी किसी इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं तो इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उन्हां नाल संकल्प नहीं चलते। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इसकी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ये इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। इस तरह है दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो। ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा। इच्छा पूरी करन विच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो वह इच्छा तो कई दफा पूरी हो जाती है, तो जे ना पूरी होवे तां वी एक रेखा छोड़ जाती है, बाकी इच्छावां इन चलदियां रहिंदियां ने जिवें नदी बह रही है। भावें नदी दे कोल घर है, बह रही है, पर नदी नाल उतना ही मतलब है। जो पी लिया है पानी उही हिस्सा बने है, बाकी वग रहा है। दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है, इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, इस आसा रूपी नदी दे च पानी केड़ा है संकल्प। जिस जिस इच्छा नूं पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां, ओह उस नदी दा जल बन जांदा है, उस नदी दी धारा बन जांदी है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी। इस आसा रूपी नदी दे च अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा, क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे, ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी, लाजमी होवेगी। व्याकुली गंभीर है ए नदी, गहरी कितनी है, इदा पाट कितना गहरा है, ए चौड़ी कितनी है, ए गहरी कितनी है। तो ए राजयोगी ए महान संत, मन दियां गहराइयां नूं समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है, व्याकुलता ही इसकी गहराई है, बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है, बेचैनी अजे भी नाप तोल दे च नहीं आई। कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। इदियां जड़ां नहीं लभदियां, इदी तय नहीं लभदी, व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे प्रबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही। ये इसनूं उल्टा के कह दो, ये बेचैन क्यों है, तृष्णालु है, ये तृष्णालु क्यों है, इहदे अंदर संकल्प ने, संकल्प क्यों ने, इहदे अंदर इच्छावां ने, इच्छा दी पूर्ति करना चाहुंदा है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी, व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहंदे ने, जिंदगी नापी जा सकती है, चलो वध तो वध कह लिए 100 साल, तृष्णा नहीं नापी जा सकती, व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है, जमीन दे उत्ते वगदियां होईयां नदियां दे ये बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने, ये किन्नी मील लंबी है, इहदा पाट किन्ना चौड़ा है, ये गहरी कितनी है। एक कोई नदी है जो मन दे च वग रही है, ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है, ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है, ना गहराई नाप दे चाहुंदी है, वो है आसा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया। बकायदा फैसला भी कर दिता है, बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने, जिसने अपने मन नूं ही सामने रखिया है। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है, जिथे इच्छावां ज्यादा ने। और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां होईयां ने, रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं होईयां। कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकते, या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां होगी, एक भी नहीं होया। गजब दी गल, इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता और एक दिया भी सारिया इच्छावां ना पूरियां होईयां ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने ते इस तो वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां होईयां ने किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां होईयां ने कह दित्ता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने इस कच्ची जमीन देच पक्के महल किस दे बने ने इस कच्ची धरती देच पक्की जिंदगी किसनु मिली है लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में किसकी बनी है आल में ना पाए दार में लेकिन फिर भी
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
3: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਹਾਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰੋ 1550 AM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ
4: ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ
5: ਹਾਂਜੀ
4: ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ
5: ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਫੁੱਟੀ ਕੇ

0: तेजे सब्जी भले खाना है फ्रूटी कहने जाना है फ्रूटी कहने जाना है फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: तुहाडा घर तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
5: इसनु खरीदन जा वेचन ले तुहानु चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लिए काम करे जिस ते तुसी भरोसा कर सको जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद जो अपने 35 सालां तो वद्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
4: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
5: तो हर तरह दी रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल फॉर्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह अज ही गुरदयाल सिंह बाद
4: 604-351-5111 ते कॉल करो 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।

गुरमत का जमाना आया, धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया। आपने साफ कह दिता जब प्रभु ने ही ऐसा जीवन बनाया है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, दोहां दी फिक्र करो, दोहें पासे दी फिक्र करो। तन भी उसका दिता होया है, मन भी उसका दिता होया है, चेतना उसे दी दिती हुई है। बाहर दी भी फिक्र करो, अंदर दी भी फिक्र करो। किरत ते कीर्ति दोहां ते गुरु नानक ने जोर दिता। तू किरत कर ताकि तन दी परवरिश चलती रहे, तू कीर्ति कर ताकि तेनू परम आनंद की प्राप्ति होवे, प्रभु की प्राप्ति होवे। तू किसी वक्त बार मुखी हो जा, फिर अंतर मुखी हो जा। जैसे श्वास बाहर जांदा है अंदर जांदा है, लेकिन गुरमत का भी ए संदेश, गुरु नानक देव जी दी ए गल कोई बहुत समझ दे च नहीं आई। किसी अवतारी पुरुष दी गल नू पूर्ण तौर ते समझना अज भी कठिन है, अज भी कठिन है। तो मैं अर्ज करा, कुछ ऐसे लोग ने जो जीवन भर बार मुखी रहिंदे ने, अंदर दी फिक्र नहीं करदे। हुण विद्वान इंज कहिंदे ने, बाहर दी यात्रा हंकार दी यात्रा है। अगर ये अंदर नहीं मुड़दा पिया तो बाहर दी सारी यात्रा हंकार दी यात्रा है, अंदर दी यात्रा निरंकार दी यात्रा है। एक हंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। हंकारी मनुख, प्रबल हंकारी मनुख एक मासूम बच्चे कोलों हंकार नहीं चलता, क्योंकि वो समझदा ही नहीं, समझदा ही नहीं। एक मासूम दो तीन साल दे बच्चे दे सामने मनुख अपने हंकार नू प्रगट नहीं कर सकता, चलता ही नहीं, वो समझदा ही नहीं। पर एक शक्तिशाली है, ताकतवर है, ओदे सामने भी हंकार नहीं चलता, उथे नहीं चलता। एक मासूम बच्चा हंकार नू समझदा नहीं, एक शक्तिशाली हंकार नू समझदा है पर उथे चलदा नहीं। इस वास्ते अक्सर हंकारी मनुख अपने तो छोटियां नू लब्बेगा, छोटियां नू, उथे उसकी तृप्ति आउंदी है, या वद तो वद दूसरियां नू छोटा मन्नेगा, मन्नेगा, हर पक तो छोटा समझेगा, मन्नेगा। उदी हंकार दी तृप्ति इसे दी, बार दी यात्रा हंकार दी यात्रा। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, मनुख दियां लोड़ां कोई बहुत ज्यादा नहीं ने, मनुख दा हंकार बहुत बड़ा प्रबल है। मनुख बहुत कुछ अपने हंकार दी खातर करदा, कदी बगौर मुताला कर लेना। शेख सादी साहब कहिंदे ने, मेरियां भी अखां ने, संसार दियां भी अखां ने, 90% कम ते मैं लोकां दी अखां वास्ते करदा, अपनी अखां वास्ते ना। किवें मैं लोकां दी नजरां तो उच्चा उठ जावां ते लोकी सिर उच्चा करके मैनूं वेखण। हंकार ए चाहुंदा है, नौ खंड पृथ्वी दे च मैं जाने आ जावां। महाराज कहिंदे नवां खंडां विच जाणिए, नाल चले सब कोए, सिर्फ एक शहर दे लोकी ही मैनू ना मन्नन, सिर्फ एक मुल्क दे लोकी ही मैनू ना जान देवन। सारा संसार जानदा होवे ते सारा संसार झुके ही। हंकार दी ए मंग है। ये गल वखरी है, हंकार कदी तृप्त नहीं हो सकता। सदा हमेशा कोई ना कोई उस तो अगे होवेगा,
जे ये धन विच अगे होवेगा तो कोई सेहत विच तंदुरुस्ती च अगे होवेगा, ते जे तंदुरुस्ती विच अगे है ये कला विच ज्ञान विच पिछे पिछे होवेगा, कोई इस तो अगे होवेगा। जे ये कला ते ज्ञान विच अगे ते कोई स्वपन विच इस तो अगे होवेगा, सुंदरता विच इस तो अगे होवेगा, किसे ना किसे पक्ष विच हर मनुख दे कोलों कोई ना कोई अगे होवेगा। मनुख हर पहलू विच अगे नहीं हो सकता, अज तक कोई इस तरह का मनुख होया ही नहीं जो हर पहलू विच अगे होवे। ये भी मैं अर्ज कर दे, किसे ना किसे च पछड़े होया होवेगा, कला विच अगे होवेगा, शरीरक बल विच पछड़े होया होवेगा, तंदुरुस्ती विच पछड़िया होवेगा, स्वपन विच पछड़िया होवेगा, ताकत बाहु बल राजनीति विच या धन संपदा विच पछड़िया होया होवेगा। हर पक्ष विच मनुख अगे नहीं होंदा, हंकार हर पक्ष विच अगे होना चाहता है। बड़ी चोट लगती है उसनों जद किसी पहलू च उस नालों कोई अगे होवे, हंकारी दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, छोटे मासूम बच्चे दे सामने मनुख दा हंकार नहीं चलता, क्योंकि समझदा ही नहीं हंकार की होंदा। समर्थ शक्तिशाली दे सामने भी हंकार नहीं चलता, क्योंकि मनदा नहीं, उत्थे हंकार चलता नहीं। इस वास्ते हंकारी अक्सर अपने ते छोटियां नूं लब्बेगा या दूसरियां नूं छोटा समझेगा। हंकार दी यात्रा है, निरंकार दी यात्रा, विनम्रता दी यात्रा है, निर्माणता दी यात्रा है। मिठत नेमी नानका गुण चंगे आईयां तत्, विनम्रता सारे गुणा दा निचोड़ है, गुरु नानक इंज कहंदे। जिवें तिल ने ते फिर तिलां दा तेल है, बदाम ने ते फिर बदामां दा रोगन है, सारे गुण ने ते फिर गुणा दा तत् है कि विनम्रता निर्माणता। मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईयां तत्। एक आलम इंज कहिंदा है, जुबां खोलेंगे मुझ पर बद जुबां क्या बदशुवारी से, कि मैंने खाक भर दी है उनके मुंह में खाक सारी से। मैं ते सारियां दी खाक सार हो गया, पैरां दी खाक हो गया, हुण होर मैनू की पछाड़ोगे, मैं ते खुद ही पछड़े आया, मैं ते सब दे पैरां दी खाक। दी सावत है बहुत बेहाला, गुरु अर्जन देव जी महाराज, सगल चरण की एहो मन राला, हे प्रभु मैं ते सारियां दे चरणां दी खाक, सारियां दे चरणां दी धोड़। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा एक वाक शब्द है, ते लंगर आग दा पर है परशियन दे सारा। अखीरलियां पंक्तियां सतगुरु उत्थे कहिंदे ने, बदबख्त हमचों बखील गाफल, बेनजर बेबाक, हे प्रभु मैं कोई चंगी किस्मत लेके नहीं आया, मेरी प्रालब्ध चंगी नहीं है। क्यों तू तो नहीं मिलिया, किया होया जे बहुत कुछ मिलिया, तू तो नहीं मिलिया। बद वक्त हम चो बखील, चुगल खोर भी हां, निंदा भी करदा, हंकारी मनुख नूं निंदा विच रस मिलदा है। जिन्हों उंज छोटा नहीं कर सकदा, निंदा नाल छोटा करन दी कोशिश करदा है। निंदा की आउंदी है, गल नूं घटा के बयान करना, खुशामद की ये गल नूं वधा के बयान करना, दोवें झूठ ने, दोहां नाल मन मैला हुंदा है, दोहां नाल मनुख परमात्मा तो दूर हुंदा है। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज रोकदे ने, उस्तत निंदा दो ते आगे,
खोजे पद निर्बाना, पर जन नानक एव खेल कठन है कि नहु गुरुमुख जाना। औखी खेड है कि मनुख निंदा भी ना करे ते उपमा भी ना करे, या मनुख घटा के गल करदा है या वधा के करदा है। अक्सर वैरी दी गल मनुख घटा के करदा है, अंदर ईरखा है, जलन है, ते मनुख घटा के गल करदा है, निंदा करदा है। अंदर कोई लालसा ते लोभ है तो मनुख खुशामद करदा है, वधा के गल करदा है। फुल नू कंडा कह देना ये निंदा है, गल घटा के बयान की गई है। पर कंडे नू फुल कह देना ये खुशामद है, गल वधा के बयान की गई है। इन्हा दोहां नाल मन मैला होंदा है। फुल नू भावे कंडा कहिए, भावे कंडे नू फुल कह दईए। मैं कई दफा हैरान होना, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस तरह के पुरुष निरपक्ष आते ने, पक्षपाती नहीं आते। भाई गुरुदास जी ने एक लंबी चौड़ी पौड़ी विच एक वार्ता लिखी, उसका भी सूक्ष्म जिहा रूप मैं थोड़े सामने रखते हैं। दुर्योधन श्री कृष्ण जी दे पास गए, कहन लगे भगवान जितने तुसी सखा अर्जन दे हो मेरे भी हो, जितना संबंध थोड़ा उन्हां नाल है मेरे नाल भी है, साड़ी मदद करो तुसी, मैं थोड़े कोल आया फरियाद लेके। इस कथा नू भाई गुरदास जी ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। श्री कृष्ण ने कहा एक मैं आ एक मेरी फौज है, तू दोहां दे च एक नू चुन सकदा है, या मेरी फौज ले ले तेरे पक्ष दे च लड़ेगी, या तू मैनू ले ले मैं तेरे पक्ष च खड़ा हो जावांगा। राजनैतिक बंदा सी दुर्योधन, धार्मिक तो है नहीं सी, संसारी बार मुखी मनुख सी, बार मनुख जिसका सब कुछ बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदरों सोचता है मौका मिल गया, कल्ले कृष्ण नू मैं की करना, महाराज फिर फौज ही दे दो। कृष्ण ने कहा ठीक, मेरी फौज तेरे पक्ष दे च खड़ी होगी। अर्जुन आया है, चरना ते मथा टेके है। श्री कृष्ण कहने ने तू देरी नाल आया, दुर्योधन ने मंग की थी सी ते मैं कह दिता सी या मेरी फौज ले ले या मैनू, फौज ते उसने मंग ली है, सिपाही ते उसने मन सेना ते उसने मंग ली है, हुण ते मैं ही हां कल्ला। अर्जुन हाथ जोड़ के कहिंदा है भगवान जे ए अवसर मैनू पहले मिलदा मंगण दा ते मैं उदों भी थानू ही मंगना सी, थोड़ी सेना नू नहीं मंगना सी, तुसी मेरे पक्ष दे च खड़े हो गए तो फिर हार भी थोड़ी जित भी थोड़ी, अपना ते कुछ भी नहीं निश्चिंत, असी ते बेफिक्र हो जावांगे। संसार दे इतिहास दे च इस तरह पहली दफा होया है कि कृष्ण जी दी सेना दुर्योधन दे पक्ष च खड़ी है, स्वयं कृष्ण पांडुआं दे पक्ष अर्जुन दे पक्ष च खड़े हैं। इस तरह दा फैसला कोई निरपक्ष मनुख कर सकता है, जो निरपक्ष है, जिन्हों लग लपेट नहीं है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे च औरंगजेब दे कुछ गुण भी लिखे ने, हैरानगी है मैनू, जेदे हुक्म दे नाल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज शहीद किए गए
ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਫਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੜਪਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੂਬੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਅਲਲ ਸੁਭਾਅ ਉੱਠਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਸੁਭਾ ਕੇ, ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਹ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉਂ, ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ।

ਅੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਠ ਹੀ ਨੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰੈਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ 3,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਹ ਤੂਰ, ਕੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੂਰ, ਉਸ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8-10 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਹਾੜ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ 90% ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਲੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਦੀ ਲਮਕਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਹ ਤੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 100-150 ਭੇਡਾਂ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ, ਉਹਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਭੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਇਜ਼ ਭਾਵ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਮੈਦੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਵਦੇਸੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਉਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਠਾਮ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਈ ਠਿੱਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ,
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਫਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਫਤਾਬ ਆਖੋ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਖੋ, ਆਫਤਾਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੂਰਜ ਆਖੋ, ਰਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਰਵੀ ਆਖੋ, ਭਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਮ ਆਖੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾ ਕਹਿ ਕਹਾਵੇ, ਕਹਾ ਮੈਂ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਕਹਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾ ਕਹਿ ਕਹਾਵੇ, ਕਹਾ ਮੈਂ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਂ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਥਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਲਾ ਮਕਾਨ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਸ ਪਿਆ ਇਹ ਅਯਾਲੀ, ਪੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਖੁਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਗਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਜ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਸਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐ ਖੁਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇੜਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪੀ, ਤੂੰ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਲੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ।
तेनू कदी ताप चढ़े ना ते मेनू जड़ी बूटियां दा भी थोड़ा जा ज्ञान है। मेनू अपने प्यो तो मिलिया सी जो गुजर गया। ओ जड़ी बूटियां तोड़ के कोट के मैं तेनू पिला देंगा, तेरा ताप ले जाएगा। हे खुदा, एक होर भी खूबी है मैनू मेरे को, तेरे कपड़े पाट जान ना, मेरे को सुई धागा भी है, मैं रखे होया है, तेरे कपड़े सी देंगा। फिर होर भी सुन ले खुदा, किधरे तेरी जुत्ती पाट जाए ना, मैनू वह भी गंढण की जात आती है। तू आ ते सही, मैं तेरिया जुतियां गंढांगा, मैं तेरे पाटे हुए कपड़े सियांगा। ए खुदा तू आ ते सही, जे किधरे तेनू थकेवा होवे ते मैनू मुठ्ठी चापी करन दी भी बड़ी वधिया जाच आउंदी है, मैं तेरा थकेवा ला देंगा। ते किधरे तेनू ताप चढ़ जाए ते मैं तेरा ताप भी छेती ला देंगा। हजरत मूसा लंघिया जा रहा सी, उन्हें ये बोल सुने, पहली दफा सुने भी कोई मनुख खुदा दे सामने अपने गुणा नु रख रहे है। और वो जो फरियाद कर रहा सी, तरले ले रहा सी, इनू ईरान दे एक महान संत मौलाना रोम ने मसनवी विच दर्ज किया है। तू कुजाई ताशमम चाकरत, ये खुदा तू किथे है, मैं तेरी चाकरी करनी है, तेरी नौकरी करनी है, तेरी गुलामी करनी है, जो कुछ मैनू आउंदा मैं तेनू दस दिता है, जेड़े जेड़े गुण मेरे कोल ने मैं तेनू दस दिते ने, तेरे गुणा का मैनू पता कोई नहीं। ओ वाइज कह रहा सी तू ला शरीक है, तो आपां भी ला शरीक है, साडा कोई शरीक नहीं। ओ वाइज कह रहा सी तू ला मकान है, तेरा कोई थां टिकाणा नहीं, तो अपना भी कोई नहीं। तो इस हिसाब नाल मैं तेरे नाल सांझ बनाई है, तू मेरियां खूबियां सुन ले, बाकी मैनू कुछ नहीं पता। तू कुजाई ताशवम चाकरत, मौलाना रोम ने लिखे इस तरह की, जब उसने उच्ची फरियाद की थी, तू को जाई तू किथे है, तू को जाई ताशमम चाकरद, मैं तेरी चाकरी करनी है, मैं तेरा गुलाम बनना है, मैं तेरी सेवा करनी है। कहने ने हजरत मूसा नु क्रोध चढ़िया, उन्हें दो थप्पड़ खिंच के उसने मारे। खुदा नु ताप चढ़दा है, तू दवाई कोट के पिलाएगा, ओदे कपड़े पाट देने तू सी देगा, ओदी जुत्ती पाट दी है। मूर्ख तेनू इतनी भी समझ नहीं खुदा की है। उते व्यापक सता एक महान शक्ति है, तेनू कख नहीं समझ, फिर शब्द ना बोली, चला गया कहो दूर थे। रोन लग पिया आया ली, कहिंदा सारे जहान विच इक तू ही ते सी, वाइज कहिंदा सी मेरे वर्ग है। पता है संबंध किथे जुड़दा है, या दूजे नू अपने वर्गा बनाओ या खुद दूजे वर्गे बनो, उंज नहीं जुड़ेगा संबंध। या कोई गुरु वर्गा बने या गुरु नू अपने वर्गा बनाए, गुरु साडे वर्गा नहीं बनेगा। अगर साडे वर्गा बन जाए तो गुरु गुरु ही नहीं है। प्रभु साडे वर्गा नहीं हो सकता, अगर साडे वर्गा हो गया तो प्रभु प्रभु ही नहीं है। सानू प्रभु वर्गा होना पेगा, परमात्मा वर्गा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए, मनुख नू वसीला दिता है उस परमात्मा ने परमात्मा होण दा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, हरी दा जन हरी दा भगत हरी जैसा चाहिए, स्वभाव करके, स्वभाव करके। फरियाद पिया करदा है रो के, एक तू ही ते सी मेरे वर्गा। पर ए रैबर कहिंदा है, ए पैगंबर कहिंदा है, तू मेरे वर्गा नहीं है। जारो जार रोन लग पिया। दो रोटियां बनाईया, दरिया दी दरिया रह गईया, दुध भी धरे दा धरा रह गया, उसने पीता नहीं, इतने उदे दिल नू चोट लगी।
ਕੋਹ ਤੂਰ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਤਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਐ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁੜਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਪ ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਖੂਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ। ਖਾਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਸਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇਰੇ ਚ? ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸਨਵੀ ਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਵਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ, ਨੇ ਬਰਾਏ ਫਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਚਤੁਰ ਤੇ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਭੋਲਾ ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਂ। ਕਿਤਨੀ ਚਤੁਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਤਨਾ ਪਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਤਨਾ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਭੋਲਾ ਭਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬਰਾਏ ਵਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ, ਨੇ ਬਰਾਏ ਫਸਲ ਕਰਦਨ ਆਮਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਐ ਆਯਾਲੀ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਝਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਝਿਆ, ਤੇਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾ ਤੇ ਰੀਝ ਗਿਆ।
इनो भाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने कहां को करे कछ होत ना कहूं के किए जौं की प्रभ मान ले सर्व सुख ताहे जीव जेदी मन लवे। और उन भोले चंगे लगदे ने भगत भोले हुंदे ने भोले भाई मिले रगर आया। भगत कबीर जी कहंदे ने कहत कबीर भगत कर पाया भोले भाई मिले रगर आया। भारत देच एक चोटी दे जोगी नू भोला नाथ करके कहंदे ने शिव जी नू भोला नाथ भोला भोला भोला। परमात्मा दी दुनिया च ए भोलापन चल रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने सह सियाणपां लख होवे पर ए सैकड़े तरह दियां लखां तरह दियां सियाणपां नावन संसार दे ते कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। पर निरंकार दी दुनिया च नहीं चलती है धर्म दी दुनिया च नहीं चलती। जब अंतरमुखी होना है सारियां सियाणपां नूं परे रख देना है। सियाणपां दे आसरे ते बाहर दी सियाणपां दे आसरे दे उत्ते मनुख दे हंकार दी यात्रा है निरंकार दी यात्रा नहीं। इतनी मैं अर्ज कर रहा अहंकार सब तो अगे होना चाहता है सब तो अगे होना चाहता है। विनयवा मनुख सब तो पिछे होना चाहता है सब तो पिछे होना चाहता है। हैरानगी है कि भगत जन अवतारी पुरुष थां थां ते अपने आप नूं कह देंदे ने असी कोई चंगे नहीं कोई भले नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ते ऐलानिया कहंदे ने हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई प्रणवत नानक तारे सोए। शेख शरफ सूफी फकीर दे पोतरे ने गुरु नानक दे प्रश्न कर दिता सी कौन हो तुसी थोड़े बोला ने प्रभावित बड़ा किया थोड़े इत्थे आउन नाल फिजा बड़ी महत्तर हो गई है। तुसी साडे कोल की बैठे हो जे लगदा जिवें जिमें खुदा बैठ गए कौन हो तुसी। जद बार बार शेख शरफ सूफी फकीर दे पोतरे ने पूछिया कौन हो तुसी भावें व्याकरण दे ग्रैमर दे ज्ञानी इस दे भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं। सतगुरु ने जवाब देते हैं मानस मूरत नानक नाम श्री राग का शब्द है। मनुख की मूर्तियां मनुखा मानस मूरत नानक नाम पर करणी कुत्ता दर फुरमान। इतनी विनम्रता इतनी निर्माणता। जवसी साहब दियां चार पौड़ियां दे कुदरत दी विचार है। कुदरत कौन कहां विचार वार ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। इहदे च पहले चानण पख नूं साहिब लैंदे ने असंख जप असंख वाह कुदरत दे च की हो रहे और कौन कौन ने बड़े जपीश्वर ने बड़े तपीश्वर ने बड़े भगत ने बड़े ज्ञानी ने बड़े दानी ने असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास। इस तरह का खुलासा सुखमनी साहब दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया। कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी पता नहीं कितना यह चानण पक्ष है। फिर सतगुरु रात नूं अगे करदे ने रात भी है असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हरामखोर असंख अमर कर जाए जो जबरदस्ती अपना हुक्म चलांदे ने। अगले दी तौफीक भी नहीं देखदे कि अगला ये हुक्म मन भी सकेगा कि नहीं इतनी उहदी समर्था भी है कि नहीं पालना भी कर सकेगा कि नहीं पर भार बोझ बन जांदे ने उस उत्ते जबरदस्ती चलांदे ने। असंख अमर कर जाए जो असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए। इन्हां सारिआं दी गिणती करदिआं करदिआं करदिआं करदिआं तीन पंक्तियां विच ते मूल पंक्ति ए कुदरत कौन कहा विचार पर इस पौड़ी विच नहीं है। तीन पौड़ियां विच मूल पंक्ति यही है कुदरत कौन कहा
विचार। पता इस पौड़ी दे केड़ी पंक्ति है, नानक नीच कहे विचार। नीचा दी गिनती करदिया करदिया, मूर्खा दी गिनती करदिया करदिया, पापियां दी गिनती करदिया करदिया, चोरां दी गिनती करदिया करदिया, फिर उसे कतार दे उसे लाइन सतगुरु आप खड़े हो जाते। नानक नीच कहे विचार। इन्हां नीचा दी विचार करन वाला कौन है, गिनती कौन कर रहा है? नानक नीच कहे विचार, वारे ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। एक होर पहलू भी इतिहासक मैं थोड़े सामने रखा, गोविंदवाल साहब की गल है। धन गुरु अमरदास जी महाराज अपने सिंघासन ते बैठे, गुरु अंगद देव जी महाराज दे साहबजादे दातू जी शरीकां दे भड़काए हुए क्रोध नाल भरे हुए आ गए। संगत च आउंदे आई खिच के लत मारी धन गुरु अमरदास नूं, सिंघासन ते साडा सी तुसी जा बैठे, सौगात ते साडी सी तुसी सिंघासन ते बैठ गए। खिच के सीने च लत मारी, सतगुरु थले गिर गए। बिरद शरीर सी 84 साल दी आयु, ओ जवान बिल्कुल नौजवान ताकतवर। गिरदियां सार सतगुरु अपने आप नूं संभालदे ने ते दातू दे चरण पकड़ लै, ते जो कुछ मुखार बिन तो बोले ने कवि संतोख सिंह जी ने गुरु प्रताप सूरज दे च इंज लिखे ने, एक तो सेवा करत रहे हूं, दुतिये बैते बिरद भए हूं, या ते अदक शरीर कठोरा। दातू जी मेरा शरीर बड़ा सख्त है, हड्डियां बड़ियां करड़ियां ने, क्योंकि एक उम्र मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, बुढ़ा हो गया, बिरद शरीर है, हड्डियां सख्त ने, चमड़ी सख्त है। दूसरा, मैं सेवा करड़ी करदा रहा, तप्पड़ झाड़दा रहा, लकड़ फाड़दा रहा, लंगर वंडदा रहा, लंगर बनांदा रहा, पानी ढाउंदा रहा, करड़ी सेवा करदा रहा, उस नाल मेरा शरीर करड़ा हो गया। दुतीये बहते बिरद बहो, या ते अदक शरीर कठोरा, तुमरे चरण मर्दर नह थोरा। थोरे चरण थोड़े पैर बड़े कोमल, बड़े कोमल, मेरा शरीर बड़ा सख्त, तुसी खिच के मैनू लत मारिए, थोड़े चरणा कोई मौत ते नहीं आई, कोई तकलीफ ते नहीं हुई। दातू हैरान, खिच के लत भी मैं मारी, ते हाथ जोड़ के मेरे अगों खड़े, इन्नी विनम्रता। मक्के दे इमाम ने खिच के गुरु नानक दे सीने च लत मारी है, जीवन मारी लत दी, केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी। कि कौन महान काफरां दा काफर सुत्ता पे है, सीने च खिच के लत मारी। वकत दा रैबरी पुरुष, ब्रह्म ज्ञान दी मूर्ति, तमाम रब्बी शक्तियां नाल भरिया होया हिरदा। कि कौन महान काफरां दा काफर है, खुदा दे घर दी तरफ पैर करके सुता पे है। उत्थे सतगुरु कहंदे ने, ए इमाम, जिस पासे खुदा नहीं है उस पासे मेरे पैर कर दे, भाव ते इतना सी मैं जिधर देखना है ते खुदा ही है, ते खुदा ही। भाई गुरुदास जी लिखते ने, फिरिया मक्का कला दिखाई, सीने च लत खा के और महान गाल सुन, बहुत वड्डी गाल है। कौन काफरां दा महान काफर सुत्ता पे, किसे सुहागण नूं वेसवा कह देना है, बहुत वड्डी गाल है। रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नूं काफर कह देना, ये केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी। पर सतगुर सहन कर गए। बार दी यात्रा सारी हंकार दी यात्रा है, अंदर दी यात्रा निरंकार दी और विनम्रता दी यात्रा है। बाहर दी यात्रा में सब कुछ हो जावा और सब तो अगे निकल जावा, अंदर दी यात्रा में सब कुछ खो जावा, मिट जावा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अंदर मनुख ना कुछ हो के सब कुछ हो जाता है,
और बाहर सब कुछ होके भी कख नहीं आता, यह भी महज करते हैं, यह भी ध्यान गोचर है। बाहर अगे निकल के भी इन्हों पता चल जाता है कुछ भी नहीं, ठीक है मैं बथेरे हाँ तो धन तो अगे निकल गया, शक्ति तो अगे निकल गया, प्रभुता तो अगे निकल गया, या कला दे चगे हाँ, गुणा दे चगे हाँ, रूप दे चगे हाँ, रंग दे चगे हाँ, जात दे चगे हाँ, बाहर सब कुछ मिलके भी पता चल जाता है कुछ नहीं मिले, बाहर सब कुछ होके भी पता चलता है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अंदर जद मनुख सब कह देता है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और इस अवस्था ते पहुंच जाता है, सब कुछ हो जाता है, बूंद सागर हो जाती है, परमात्मा वर्गा हो जाता है। अंदर दी यात्रा विनम्रता दी यात्रा है, ना कुछ होने दी यात्रा है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। बड़ा सुंदर इस दे ते एक आलम ने अपना ख्याल दिता है, अज राह चुनार के सलामत न कुनत, समाप्ति करिए, रस्ते दिच इस ढंग नाल चल कि तेरे चलन नाल किसे दा रस्ता ना रुके, तू किसे दे रस्ते दा रोड़ा ना बने, तू किसे दे रस्ते दा कंडा ना बने, तू किसे चल दे मनुख दे पैरां नू रोके ना। अज राह चुनार के सलामत ना कुनत, कई मनुख मनुख नहीं आंदे, रोड़े आंदे ने, कंडे आंदे ने, उन्हां दी कोशिश आंदी है रोकिए, ये पछड़िया ही रहे। अज राह चुनार के सलामत ना कुनत, बा खलक चुना जी के कयामत ना कुनत, खलकत दिच मखलूक दिच इस ढंग नाल रहे कि तेरे रहन नाल कयामत ना होवे। कई बंदे बंदे नहीं आते, बस चिंगारियां ही आते हैं, जिथे बैठे कोई ना कोई पांबड़ ते बालन गए, कोई ना कोई अग ते लान गए, कुछ ना कुछ ते चिंगारी छोड़न गए। बाहलक चुना जी के कया मत न कुनत, दर मस्जिद गर रवे के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खानद ओ इमामद न कुनत। कदी तेरा ख्याल आवे ना कि मैं मस्जिद दे जाना है ते नमाज पढ़नी है, अगे अगे हो के नमाज ना पढ़ी, मता तेरे अगर ख्याल पैदा हो जाए मैं इमाम हाँ और मैं खुदा दे घर दे च भी नंबर वन ना, मेरा पहला नंबर, बाकी सब पछड़े हुए, बाकी की ने कुछ भी नहीं। इस घर दे च ते जो कुछ ना कुछ हो जाता है वह सब कुछ हो जाता है, और जो सब कुछ होने की कोशिश करता है कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, सब कुछ होने दे च, सब कुछ हो जावा उस दे च मनुख जितनी मेहनत करता है, यतन करता है, उसका सवा भाग भी मनुख इस दे च नहीं लांदा कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और वाकई जिस दिन ये ना कुछ हो जाता है सब कुछ हो जाता है, बीज ना कुछ होके एक दिन फल बन जाता है, दरख्त बन जाता है, पर पहले ही तो मिटता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो मैं करा एक बाहर दी यात्रा है, एक अंदर दी यात्रा है, एक अहंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। इन मैं पूर्ण तौर पर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों खोलना सी, पर समा अपने ढंग नाल जो है चला गया। दो मिनट मैं आप जी दे होर लवां। अंदर दी यात्रा नूं ही ध्यान साधना कहिंदे ने, ध्यान दा अंदर जाना, ध्यान दा बाहर जाना, बाहर दी यात्रा। बाहर मनुख उदों दुखी हो जांदा जद उस तों कोई अगे है, उस तों कोई अगे है, किसी चीज दे च भी अगे होवे, प्रभुता च अगे, धन दे च अगे, शक्ति दे च अगे, कला दे च अगे, गुणा दे च अगे, रूप रंग दे च अगे, किसी चीज दे च ही अगे, दुखी हो जाएगा। तो सारी दुनिया च मनुखां नूं बहुता दुख इस गल दा हुंदा है, ये अगे क्यों है, अपने ही दुख मनुख दे बथेरे आते हैं, पर एक दुख होर सहेड़ लेंदा है, ये अगे क्यों है, इसनूं पराई तात कहिंदे ने, महाराज ने जिक्र किया, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला, पराई तात लई फिरदा, ये अगे क्यों है। अंदर दी यात्रा जद कोई अगे आंदा है तो खुश हो जांदा है, उहदे कदमां विच बैठ के प्रसन्न होंदा है।
हर के संत बताओ मार्ग, हों पीछे लाग चली। पीछे चलण दी खुशी होंदी उस, उत्थे ना कुछ होण दी उहनूं खुशी मिलदी है। जद कोई अगे जा रहा होंदा है उहदी उमंग वध जांदी है, तरंग वध जांदी है। सिर्फ मैं ही प्रभु दे मार्ग ते नहीं चलिया, कोई होर भी चलिया और बहुत अगे लंघ गया, बहुत अगे लंघ गया, उहनूं खुशी मिलदी है। बाहर दी यात्रा जो अगे लंघ गया है, जैलसी आउंदी है, ईर्षा आउंदी है, ताहत आउंदी है। पर अंदर दी यात्रा जब कोई अगे लंघ जाए खुशी आउंदी है। और अंदर दी यात्रा जिस दिन मनुख ना कुछ हो जाता है उस दिन परमात्मा हो जाता है। इसका जो पूर्ण खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने बयान किया है, किसी वक्त सतगुरु ने फिर नदी नाव संजोगी मेले कराए ते खोलांगे अज इतनी सेवा प्रवान करनी, साहेब रहमत करन थोड़े ध्यान नू अंतरमुखी ले जान। यात्रा अंदर दी होवे और अंदर दी यात्रा दे जिहड़े गुण पनपदे ने वो कागजी फुल नहीं आउंदे, प्लास्टिक दे फुल नहीं आउंदे, असली फुल आउंदे ने। उहनां दे जिंद जान आउंदी है, उहनां दी बकायदा बुनियाद आउंदी है। और वो ऐसे गुण आउंदे ने जिन्हां दे उत्ते परमात्मा सदके जांदा है, परमात्मा गलवकड़ी च लैंदा है। इस वास्ते भगत परमात्मा नूं प्यारे ने, भगत सब तो नेड़े ने सतगुर सारिआं नूं भगती दा तोहफा, भगती दा ए महान दान झोली दे च पावे ताकि साडा जीवन धन धन हो जाए। मैं फिर अर्ज करां, सुन के भरोसा बनदा है पर भरोसा साडा कोई तोड़ सकदा है? निक्की निक्की गल ते भरोसे टुट जांदे ने।

प्रतापुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूने सैभं गुरु प्रसाद मुख श्री शास्त्र खट पिंग ग्रंथ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रूप साथ संगतियों फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप रिच ओ सूक्ष्म है अदृश्य है सरगुण रूप रिच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरखत दिखाई देंदा है जड़ा नहीं दिखाई देंदियां। शरीर दिखाई देंदा है आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनों इंज बयान करिए जो मकान का गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है तो जो बुनियाद का प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त का गुप्त हिस्सा है वो उस दियां जड़ां ने और जो जड़ां का प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर का गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है और जो आत्मा का प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार का गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है ते जो निरंकार का प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य का उस अरूप का उस गुप्त का खेल है तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने मिट रही ने बन रही ने मिट रही ने पर इन्हां लहरां का पैदा होना इन्हां लहरां का मिटना सब कुछ सागर विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परले सब परमात्मा दे विच हो रही है सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नूं खोजना नहीं है खोजना उसनूं पैंदा है जो गुम हो गया है। ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है जाना उस दे कोल पैंदा है जिहड़ा अपने तो दूर हो गया ना उस दे कोल जाना है ना उसनूं लभना है सिर्फ जागना है सुचेत होना है सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर है ते हाजिर हजूर है। रविदास कहिंदे ने ए हथ भी जितना तन तो दूर जा सकदा है वो ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि ओ मेरे कोल सी कि मैं उसकी तलाश करता रहा खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है अपने आप नु जगाना। धन सोती फिर सद जागनता। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहिंदे ने असीं अधे जागे होया पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देंदा है निरंकार नहीं। भोजन का रस आउंदा है भजन का नहीं। वाहिगुरु करदे आ किसनूं रस आउंदा नहीं पर भोजन की बुरकी पाईए तो रस आउंदा है। रसना अधी जागी हुई है अधी सुती हुई। अखां अधियां जागियां ने अधियां सुतियां हुईआं ने। संसार नूं वेख रहियां ने निरंकार नूं नहीं। कन अधे जागे ने अधे सुते ने। ये जगत नूं सुन रहे ने गुरु नूं नहीं सुनदे ना परमात्मा नूं सुनदे।
शरीर संसार नू स्पर्श कर रहे है, निरंकार नू नहीं। जब कोई पूर्ण तौर ते जाग जांदा है, सुचेत हो जांदा है, तो रसना नू भजन दा भी रस आन लग पैंदा। रसना गीदी बोलत राम, वो जैसे राम कहिंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहिंदा है, रस नाल भर जांदा है। उन्हूं जो कुछ दिखाई देंदा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप नूं जगाना है। कीर्तन सुनिया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता, और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ये जागया नहीं। जब जाग जांदा है, रसना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा विच बस जांदा है। तो मैं इस तरह जद भी किसी महापुरुष नूं आत्म ज्ञान होया, वो इस गल ते हैरान होया, प्राप्त कुछ भी नहीं होया, जिहड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया, लभिया कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं, जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नूं पता नहीं होंदा कि वह मिलिया होया है। जिसनों असी भगत संत कह देने आ, उन्हों पता है कि उसके हाथ तो भी नेड़े है, उते हाजिर नाजर है। जब कभी इस तरह की उपलब्धि किसी नूं होंदी है, उसनों हैरानगी भी आती है कि मैं जगत नूं दसा। हकीकत यह है, असलियत यह है। और कभी कर्म कांड तो उच्चे उठन की कोशिश करो। पर कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखो नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहते हैं कि राम नाम का हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते हैं संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे, छुपाने की कोशिश करता है, पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों, तो उस दे अंदर एक दसण की भुख पैदा हो जाती कि मैं बाकियों नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना दी। सारे पहाड़ां दे सोना चांदी नहीं आउंदा, ते समुंदर दे सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आउंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उस दे अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहिंदे ने मैं तलाश कर रहे हां उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकदे ने, मैं बेचना चाहना। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन। पटन कहिंदे ने बाजार नूं, आप कहिंदे ने कोई बाजार ही नहीं है, किथे बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरियां दी मंडी च बिकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदन दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहिंदे ने हीरा कोल है, वेचना चाहना। जो अगमी दौलत मैनू मिली है, मैं दसना चाहना। जो अगमी रस मैनू मिले है, मैं जगत नूं समझाना चाहना। हीरा मिले है, बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं,
पता है मंडी की है सत्संग, हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा, गली गली विच मंदिर है सत्संग किधरे किधरे, गली गली विच गुरुद्वारे ने सत्संग किधरे, सुनिया पईया ने मस्जिदां खाली पे ने मंदिर, या किधरे एक कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल रही पी। हुण मशीन बंदगी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल रही ने, बैराज साहब का पाठ टेप ला लो, असा दीवार का कीर्तन टेप ला लो, सुन लो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होंदा जा रहा, ये सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर ने कोई ब्रह्म गया नहीं हो जाना, बस मनुख भी इस तरह का ही होगा, ये भी मैं कर मशीन ही होगी, मशीन की तरह की यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है, जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस विच उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना, गुरु से ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर, इन दो शहरों में बाजार ने उन्हों का नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन्ह दो बाजारों में हीरिया की खरीदो फरोख का काम शुरू होया, बस सिर्फ हीरे, रतन पन्ने लाल मूंगे नीलम जवाहरात पन्ने, जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार देखते अजकल चमड़ा ही बिकता है, या मोटा मांस बिकता है, जौहरिया की दुकाना खोल। जयपुर का जोड़ा जौहरी बाजार है, उत्थे हीरिया की खरीद फरोख्त होती है, उत्थे सिलसिला है। और इतना वड्डा यह देश है, हीरिया की मंडी, हीरिया का बाजार किधरे किधरे, हर थां ते नहीं, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लकड़ मंडी है, हर शहर में हीरिया की मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहने जिहड़ा हीरा कोल है, वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है, जिथे गाजरां मूलियां पईयां बिकदियां ने, मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावां बेचण, इत्थे मूर्खता होवेगी, इत्थे मूर्खता होवेगी। हर जगह जिते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती, इत्थे कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहिंदे ने कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहिंदे ने भ्रमण करदिया करदिया कदी कदाई मंडी मिल जाती है, पटन लग जाता है, बाजार लग जाता है। दुनिया का भ्रमण करदे करदे किसी शहर के सत्संग लग पैंदा, तो कबीर कहिंदे ने खुशी हो जाती है, मैनू मंडी लग पई। पर आप कहिंदे ने मेरी खुशी एकदम मायूसी दे बदल जाती है, क्यों? नहीं पटन, नहीं पार खो, पटन ते लब पे है, बाजार ते लब पे है, पर उत्थे जिहड़े आंदे ने पार खो नहीं, नहीं रहा दे समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदिरां विच भगवान दी कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारियां विच
गुरु का कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदां विच, खुदा की कोई समझ नहीं, खुदा का कोई ज्ञान नहीं। कहते ना पारखू ही कोई नहीं, ते जब पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है, जब पारखू ही नहीं है तो हीरा कच्च है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार विच एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, तो मैनू कह लगा गया नहीं जी ये रतन तुसी वेखे ना, नहीं विशेष रूप विच ये नौ आउंदे ने, नौ रतन, हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती नौ बनती। मैनू कह लगे ये तुसी देखे ने, मैं नहीं सारे नहीं देखे। कह लगे अज वक्त कढ़ो, मैं थोनू दुकान पर लै जाना अपनी, सारे दिखा देना, मेरे को सारे ही हैं, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान पर पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए, एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होंदा गया। पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहते ने हीरा लेके मैं बैठ गया, कोई पारखो ही नहीं है, किसी ने समझ ही नहीं, नहीं पटन नहीं पारखू। मैं दोहरा दिया, आ रहे ने लोग मस्जिद खुदा की कोई समझ नहीं है, आ रहे ने लोग गुरुद्वारे गुरु का कोई बोध नहीं है, बड़ी भीड़ जा रही है मंदिरों में भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं, नहीं पटन नहीं पारखू। आप कहते ने कदी कदाई भरमन करदिया किसी बाजार में पारखू भी मिल जाते, समझ पता है सत की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है, चर्चा ही हो रही है सत दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा गुणा दे राही, और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके, यदि किन्नी क दया है, यदि किन्ना क प्रेम है, यदि दृष्टि कितनी समानता है, ये किन्ना क निर्वैर है, किन्ना क निर्भय है, इन्हां दैवी गुणा के पैमाने नाल ही नापना पैंदा है ये मनुख किन्ना क धार्मिक है, और किस तरह नापोगे। चानना सारे का सारा सूरज का है, गुण सारे के सारे परमात्मा के ने, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, गुण तो सारे उसके ने, रोशनी इतने गुरुद्वारा हाल दे हो रही है, पर रोशनी तो सारी सूरज की है, गुण सारे ही परमात्मा के। कबीर कहने भरमन करदिया करदिया खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लभ पिया ते पारखू भी लभ पिया, उन्हें समझ आया समदृष्टि किसनों कहते, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ आया ही नहीं बाजार विच, उन्हें परख भी है, समझ है। तो कबीर कहते मन खुश हो जाता, चलो पारखू मिल गए। कहते ने संगीत कोई गा रहा हो, कोई आलाप कर रहा है,
ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਗ ਹੈ ਕਿ। ਕੁਛ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੌਣਾ, ਜਾਗਣਾ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਖੋ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਉਂ? ਪਾਰਖੂ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ ਉਸ, ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਖੂ ਤੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਹਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

0: भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581 1900।

0: सी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदों तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.